0: तो घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी।
1: शुद्ध नमक देना, शुद्ध नहीं समझते? वैक्यूम रेपुरेटेड नमक ही सबसे शुद्ध सफेद होता
2: है। ऐसा बोलो ना,
1: वैक्यूम रेपुरेटेड निर्मा शुद्ध नमक जिसका दाना दाना एक समान।
0: ये हुई ना बात।
3: क्यों छोटे साहब, वैक्यूम रेपुरेटेड निर्मा शुद्ध नमक इतना शुद्ध कि बच्चे भी जानते हैं इसके सारे गुण।
4: புகைப்படம் அப்படின்றது யாருக்கு தான் பிடிக்காது, எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். ஒவ்வொரு புகைப்படத்துக்கு பின்னாடியும் 1000 கதை இருக்கு, நம்ப முடியுதா? நாளை காலை 11 மணிக்கு உங்கள் விவத் பாரதி தமிழ் எஃப்எம் 102.3 படம் பேசும் கதைகள், சர்வதேச புகைப்பட தின சிறப்பு நிகழ்ச்சி.